रहाओ। सब सुरती मेल सुरत कमाई, सब कीमत मेल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई, कहन न जाई तेरी तिल वड्याई। सब सत सब तप सब चंगियाईया, सिद्धा पुरखा किया वड्याईया। तुद विण सिद्धि किने ना पाईया, करम मिले नाही ठाक रहाईया। आखण वाला क्या वेचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा। जिस तू देहे

कै भोग गुण ए होर नाही कोए ना को होआ ना को होए जे वड आप ते वड तेरी दात जिन दिन कर कै कीती रात खसम विसार है ते कम जात नानक नावै बाज सनात राग गुजरी महला चौथा हर के जान सत गुर सत पुरखा बिनौ करौ गुर पास हम कीरे किरम सतगुर सरणाई कर दया नाम परगास मेरे मीत गुरदेव मोकौ राम नाम परगास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रह रास रहाओ हर जन के वड भाग वडेरे जिन हर हर सरदा हर प्यास हर हर नाम मिले त्रिपता सह मिल संगत गुण प्रगास जिन हर हर हर रास नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर सरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जान सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास धन धन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम परगास राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मन चित वह उदम जा आहर हर जियो परया सैल पत्थर मैं जंत उपाए ताका रिजक आगे कर तरया मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरया रहाओ जनन पिता लोक सुत बनता कोय न किस की तरया सिर सिर रिजक संभा हे ठाकुर काहे मन पाओ करया उडे उड आवे सै कोसा तिस पछे बचरे शरया तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन मह सिमरन करया सब निदान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल तरया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत न परावरिया राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम अपारा सब त्यावह है सब त्यावह है तुद जी हर सच्चे सिरजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्याव हो संत हो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाना एक दाते एक पेखारी जी।

संत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा, जो सेवा है तुद जी, जन नानक तिन कुर्बाणा। हर त्यावह हर त्यावह तुद जी, से जान जुग मैं सुखवासी, से मुकत भये जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जम की फासी। जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी, तिनका भउ सब गवासी। जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, परे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी।

पढ़े बहु सिमरत शास्त्र जी, कर किरिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता।

तू एको जी, तू नेह चल करता सोई, तुद आपे पावै सोई वरतै जी, तू आपे करै सो होई, तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जानोई। आसा महला चौथा, तू करता सचियार मैंडा साई, जो तौ पावै सोई थीसी, जो तू दे सोई हो पाई। रहाउ सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनु कृपा करै तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मनमुख गवाया, तुद आप विछोड़या आप मिलाया, तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे, जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछुड़या संजोगी मेल। जिस

समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुध बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेखै जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला तित सर वरड़ै पहिले निवासा, पानी पावक तिन है किया, पंकज मोह पग नहीं चालै, हम देखा तह डूबी अले। मन एक ना चेतस मूड मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया। रहाऊ ना हो जती सती नहीं पड़या,

प्यासा तुम है शाड कोई अवर न त्याऊ जो बर चाहू सो तुम ते पाऊ सेवक सिख हमारे तारिया है चुन चुन सत्र हमारे मारिया है आप हाथ दय मुझे उबरिया है मरण काल का त्रास निवरिया है हु जो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुझ जू करे हो रक्षा राख ले हो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंध दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी सेव कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जचन उपजायो आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को सेव गुण सुख दियो सत्रन को पलमो बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चिटी ते कुंचर अस थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाना घट घट के पट पट की जाना जब उदकरख करा करतारा प्रजा तारत तब देह अपारा जब अकरख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ जेते बदन सृष्ट सब तार आप अपनी बूझ उचार तुम सब ही ते रहत निरालम जानत बेद भेद अर आलम निरंकार निर्बकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेदा जाको पेवना पावत बेदा ताको कर पाहन अनुमानत महामूड कश भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पेव आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप सरूपा रंग पयो राव कही पूपा अंडज जेरज से तज कीनी ओत पूज खान बहुर राज दीनी कहूं फूल राजा हुए बैठा कहूं सिमट पयो संकर इकैठा सगरी सृष्टि दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जेते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुझ तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित हवा मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार तय है ताके काल निकट नह है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे नहर हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह श्वाय सके ना कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहार

आई दुष्ट दोखते ले हो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सबै

तित घर अनहद वाजे। आनंद सुनो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसूरे। दुख

पौड़ी। तिथै तू समरथ जिथै कोई नाहे, उथै तेरी रख अग्नि उदर माहे। सुन कै जम के दूत नाए तेरा छड़ जाहे, पौ जल बिखम असगाह गुर शब्दी पार पाहे। जिन कौ लगी प्यास अमृत से खाहे, कल मैं एहो पुन गुण गोविंद गाहे। सब सह

सत्संग है जी। बोलो जी, वाहे गुरु वाहे गुरु। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय बारिपोरी पाछे दसवीं प्रथम भगवती सिमर कह गुरु नानक लई त्या है। फिर अंकित गुरते अमरदास रामदास हो सहाय अर्जुन हर गोबिंद सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमर है घर नुन दया सब ताई हुए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब ताई हुए सहाय दसा पातशाह के पुत्रात्मक स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब ने पाठ दर दत्यंतर के खालसा से बोलो जी वाहे गुरु। श्री ब्रह्मराज आप जी के पंच प्यारे चार साहबजादे चाली मुकते हड्डियां जपियां तपियां जिन्हें नाम जपया वंड चक्या देख चलाई तेग वाही देख के निढ कीता तेना प्यार से त्यारा की कमाई दत्यंतर की बोलो जी वाहे गुरु। जिन्ना सिंगा सिंगणिया धर्म हे सीख दिते बंद बंद कटवाए खोपरिया लवाईया चरखड़िया चढ़े आ रहे ना चढ़ाए गए गुरुद्वारे सेवा कुर्बानियां कीतियां धर्म ने आ रहा से किसी देखे सत्संग निभाया तिना की कमाई दा अंदर के बोलो जी वाहे गुरु। पसता गुरुद्वार अंदर ते अंदर के बोलो जी वाहे गुरु। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे नाम चेता है चित आवन का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां गुरु खालसा साहब तंत्र चरिया है देख देख की फतेह बृद की पहज पंथ की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोलबाले बोलो जी वाहे गुरु। सिखा नु सिखी दान केस दान रैत दान विवेक दान साह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी दर्शन स्नान चौंकिया चंडे मूंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु। सिखा दा मन नीमा मत उचे मत पद के राखे आप वाहे गुरु। गुरु गरीब नवाज पंथ सदा सहाय दार दियो गुरुद्वारा ननकाणा साहब पंजा साहब से होर गुरुद्वारे गुरता जिन्हों तो आप जे पंथ नूं छोड़िया गया है उन्होंने खुले दर्शन दीदार से सेवा संभाल सदा अपने खालसा जी नूं बख्शो। ये न्योटियां दी ओट गुरु ने आसरिया दे आसरे गुरु धन धन गुरु ग्रंथ तार दोहे कर जोड़ करो अरदास तुत भावे ताने रास। हे गरीब नवाज जी आप जी दे चरण कामना च अरदास दार पिता जी आप जी ने बख्शिश की है आपके चरणा पितर गुरबाणी सुखमनी साहब के संपूर्ण पाठ दतार ऐसा संध्या समा जान के आपके चरणा सोधदार रह रास साहब ने पाठ किए कृपा करो हुई भुला चुका की माफी बख्शो पढ़ी बाणी सोध के सच खंड प्रवान गुरबाणी का भाव सारिया संगत की हिरदय जो सांडी कृपालता करो जी अगो तो शुद्ध मित्र बाणी टाणी बल बुद्धि बख्शिश करो। गरीब नवाज इस खुशी आप जी बख्शिया दाता पितर कड़ाप शादी देगा तैयार करके हाथ दतार आप जी भोग लाओ सीत प्रसाद साह संगत की रसना लायक होवे जो जी सके श्वास श्वास आप जी का पितर नाम जप बख्शिश करो दतार जी दुखा कलेशा रोगों का नाश करो सुखा का प्रकाश करो देश प्रदेश रखा बख्शिश करो जी। गीत वाज कृपा करो दतार मेहनत करे पातशाह जीओ इन्होंने खुशियां आप दी बख्शिया दातों विचों पितर कड़ाप शाह जी देगा तैयार करे हाथ दतार आप जी भोग लाओ शीर प्रसाद साह संगत रसना लायक होवे जो जी सके श्वास श्वास आज जा पितर नाम जो बख्श करो दतार दुखा कलेशा रोगों का नाश करो सुखा का प्रकाश करो दतार आप दी बख्शिया दातों जो लंगर तुर सवारियां प्रवान करनी आप चरणा सेवा कर रहे सारे टहरिया सिंघा सिंगणिया तंदुरुस्ती बख्शो चाटी कला बख्शो अति सदा ही इस तरह अपने चरण सेवा की भावना बख्शी पालता करो। गरीब नवाज जी कृपा करो अमृत वेड़े तो लैके दर से आई साफ संगत की हाजरी दर प्रवान करो घड़ियां लिख के लाओ संगत का दर से तेरे को भेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी। गरीब नवाज कृपा करो दतार जीओ दूर दराज घर बैठिया लाइव कथा की सरव कर रही सारी संगत की हाजरी प्रवान करो घड़ियां लिख के लाओ संगत का दर से तेरे को भेटा प्रवान गरीब नवाज करो। गरीब नवाज आपने संगत उद्यम बख्शे ने आप जाना धनबाद करते शुक्रिया अदा करते हैं बेहद माया ऑनलाइन गुरु घर गुरु घर सेवा संगत संगत माया पेटा कारी चैनल प्रवान करो बशा सब दमाइया सबल करो कार्यवाद मददार सात संगत दुभकामना समाधान पूरी करो जी। गुरु गरीब नवाज कृपा करो मेहनत करे बख्शिश करो खालसा पंथ सिख कौम एक तत्वाग प्यार की बख्शी करके सत सुविधा बख्शो चैनल ना जोड़ो गुरबाणी का प्यार बख्श कर दतार हर मैदान जवान फतेह बख्शा की बात करो। गुरु गरीब नवाज बख्शिश करो जी सेवा प्रवान करो भुला चुका की माही बख्शो पितर गुना में बख्श कर आज दिशा में कथक जमता वास्ते आगा बख्शो रहते कार सवार के झरना तुरादी बनाओ सही प्यारे मेरे दिन अपने आपका नाम चेता है नानक नाम तेरे भाने त्रिभाज वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह दोहरा अग्ञा भई अकाल के तभी चलाए हो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਣਾ ਕੀਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ

मैनो जोग की तोई मैं निर्गुण यारे को गुण नाही आपे तरस पयोई तरस पया मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिलै ता जीवा तन मन थी वै हरिया अमै दृष्ट शुभ करै हरै अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करै सबै बल सदा सुख मन वसै दुख

जन्म हम कालख धोवै गुर नव निद दरियाओ जन्म हम कालख धोवै कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण अवगण न विचारो कोई।

पौड़ी बाहर भेख न पाइए प्रभ अंतर जामी इकस हर जीव बाहरी सब फिरे नेकामी मन रत्ता कुटंब स्यों नित

हार तिस की कामी, वाहि गुरु जी का खालसा, वाहि गुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग साहिब सतगुरु गुरु गरीब नवाज समुची मानवता दे रहबर सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दातार जी दी पाक पवित्र हदूद अंदर हजूरी अंदर शामा दे दीवान दी हाजरी पर रही गुरु रूप साध संगत जी वडभागी हां जो सतगुरां ने प्रेरणा बख्शिश करके उदम बख्शिश करके अपने चरणा दी हाजरी प्रवाई है। संध्या दे दीवाना विच आप जी जुड़ बैठे हो। प्यार सहत भाई साहब भाई सुरजीत सिंह जी रसीला तिन्हां दे जत्थे पासों अमृत बाणी दा कीर्तन आप जी ने सरवण कीता है। आओ इस तो उपरंत जो निता प्रति आपां सतगुरां दी अमृत बाणी मारू की वार जो पंचम पातशाह जी दी उचारण कीती गई है उस दी तरतीब सहित लड़ी सहित विचार करदे आ रहे हां। कल चौदहवीं पौड़ी नाल संबंधित दो श्लोकां दी विचार आपां कीती सी। अज तीसरे श्लोक दी अते पौड़ी दी विचार करनी है क्योंकि वार दा जो केंद्री भाव हुंदा है वह सारा पौड़ी दे दिवाले घूमदा है। जां इउं कहिए भी हर पौड़ी श्लोकां दी व्याख्या करदी है वार दी व्याख्या करदी है। सो गुरदेव पिता महाराज सच्चे पातशाह जी दी इस पावन वार दी अज चौदहवीं पौड़ी अते एक श्लोक जो विचार अधीन है उस दी आपां विचार करनी है। कल दो श्लोकां दी विचार कीती सी जिन्हां दा भाव सतगुरां ने यह दर्शाया सी कि हे भाई अपने मन विच उस नूं पक्कियां कर जो स्थिर है जो अविनाशी है जो अविचल है। जो कुछ मन विच पकड़िया होया वह सब चलायमान है मिटन वाला है। अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर हर एक अंदर विराजमान है। जिवें सारे घटां विच चंद्रमा वसदा है इसे तरह हर हिरदे विच परमात्मा दी जोत प्रकाशमान है। बस उसनू अपने हिरदे विच धारण कर लईए पक्का कर लईए ते वाहिगुरु दी कृपा दे नाल फिर कूड़ झूठ अपने आप छुट जाएगा ते सच दी संभाल हो जाएगी। अज गुरुदेव जी ने अगले श्लोक विच जपन वालियां दे मुख नू पवित्र किया है। जो भी शरीर उस परमेश्वर नू आराधदा है लोक ते परलोक विच उस दी इज्जत आबरू रहिंदी है। अते पौड़ी दा भाव सतगुरु जी ने दर्शाया भी किते कोई भलेखा ना खा जाए कि जपन दा अर्थ सिर्फ किसे भेख विच बज के ही उस नू जपिया जा सकदा है। कोई भेख बना के ही रब दा प्यारा बनिया जा सकता है धर्मी बनिया जा सकता है भगत बनिया जा सकता है। गुरुदेव जी कहिंदे नहीं भेख नाल किसे पदार्थ नाल किसे दमड़े नाल किसे सियानप नाल वह वाहिगुरु वस विच नहीं आउंदा। वह परमात्मा प्रेम दी दौलत नाल कृपा दी दौलत नाल प्राप्त हुंदा है। यह सतगुरां ने अज दी पौड़ी विच दर्शाया। गुरु कृपा करे पावन श्लोक अते पावन पौड़ी दी विचार नाल आपां जुड़ना करिए विचार कर सकी रसना दी पवित्रता वास्ते उचार

गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरा की, जो प्रभु को मिलवो चाहे खोजे।

निर्मल सोए, जब लग जाना है मुझते कश होए, तब इस को सुख नाही कोई, जब ए जाना है मैं किश करता, तब लग गर्भ जोन मैं फिरता, जब तारै को बैरी मीत, तब लग निचल नाही चीत, जब लग मोह मगन संग माए, तब लग धर्म राय दे सजाए, प्रभ कृपा ते बंधन टूटै, गुरु प्रसाद नानक हौ छूटै, सहस खटे लख को उठतावै, तृप्त न आवै माया पाछै पावै, अनेक भोग भिख्या के करै नह तृप्तावै, खप खप मरै बिना संतोख नहीं को राजै, सुपन मनोरथ बिरथे सब का जाय, नाम रंग सर्व सुख होए, बड़भागी किसै प्राप्त होए, करन करावन आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप, करन करावन करने हार, इसके हाथ कहा बीचार, जैसी दृष्ट करे तैसा होए, आपे आप आप प्रभ सोए, जो के शकीनो सो अपने रंग, सबते दूर सब हूं कै संग, बूझै देखै करै बबेक, आपे एक आपे अनेक, मरै न बिनसै आवै न जाए, नानक सद ही रहया समाए, आप उपदेसै समझै आप, आपे रचिया सब कै साथ, आप कीनो आपन बिसथार, सब काश उसका ओ करनै हार, उस ते भिन्न कहो किश होए, थान थन अंतर एक है सोए, अपुने चालित आप करने हार, कौतक करे रंग अपार, मन मह आप मन अपने माहे, नानक कीमत कह न जाए, सत सत सत प्रभ स्वामी, गुरु प्रसाद किने वख्यानी, सच सच सच सब कीना, कोट मधे किने बिरलै चीना, भला भला भला तेरा रूप, अत सुंदर अपार अनूप, निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी, घट घट सुनी सरवण बख्याणी, पवित्र पवित्र पवित्र पनीत, नाम जपै नानक मन प्रीत, सलोक संत सरन जो जन परै, सो जन उदरण हार, संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार, अष्टपदी संत कै दुखन आरजा कटै, संत कै दुखन जमते नहीं छुटै, संत कै दुखन सुख सब जाए, संत कै दुखन नरक में पाए, संत कै दुखन मत होए मलीन, संत कै दुखन शोभा ते हीन, संत के हते कौ रखै न कोए, संत कै दुखन थान भ्रष्ट होए, संत कृपाल कृपा जे करै, नानक संत संग निंदक भीतरै, संत के दुखन ते मुख पवै, संतन कै दुखन काग ज्यों लवै, संतन कै दुखन सर्प ज्यों पाए, संत कै दुखन त्रिगद ज्यों किरमाए, संतन कै दुखन तृष्णा मैं जलै, संत कै दुखन सब को शलै, संत कै दुखन तेज सब जाए, संत कै दुखन नीच नीचाए, संत दुखी का थाओ को नाहे, नानक संत पावै ता ओए भी गत पाहे, संत का निंदक महा अतताई, संत का निंदक खेन टिकन न पाई, संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज तेहीन, संत का निंदक दुखिया अरदीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग, संत की निंदा दुख मैं दोख, नानक संत पावै ता उस का पी होए मोख, संत का दुखी सदा अपवित, संत का दुखी किसे का नहीं मित, संत के दुखी को डान लागै, संत के दुखी को सब त्यागै, संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा बिकारी, संत का दुखी जन्म मरै, संत की दुख ना सुख ते टरै, संत के दुखी को नाही ठाओ, नानक संत पावै तां लै मिलाए, संत का दुखी अद बीच ते टूटै, संत का दुखी कितै काज ना पहुचै, संत के दुखी को उद्यान भरमाइयै, संत का दुखी उजड़ पाइयै, संत का दुखी अंतर ते थोथा, ज्यो सास बिना मृतक की लोथा, संत के दुखी की जड़ किशना है, आपन बीज आपे ही खाहे, संत के दुखी को आवरना राखण हार, नानक संत पावै तां लै उबार, संत का दुखी इउं बिल लाए, ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए,
संत का दुखी भूखा नहीं राज।

गाऊं अष्टपदी। पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सासा सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरे चिंद आस अनित त्याग तरंग संत जना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अगन सागर तरो हर धन के भर लेहो भंडार नानक गुरपुरे नमस्कार। खेम कुशल सहज आनंद साध संग भाज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोबिंद अमृत रास पियो चेत चेत वाहो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल। सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का ही है आधार उत्तम सलोक साध के बचन अमलीक लाल एह रतन सुनत कमावत होत उधार आप तरै लोकै निस्तार। सफल जीवन सफलता का संग जाकै मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजै सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजै। प्रगटे गोपाल महांत कै माथे नानक उधरे तिन कै साथे सरन जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभु आप मिलाए मिट गए बैर पहे सब रेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न पहे गुरुदेव पूरन होई सेवक की सेव आल जंजाल बेकारते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभतारी नानक निबही खेप हमारी। प्रभ की उस्तत करहो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनि सहज गोबिंद गुण नाम जिस मन बसै सो होत निधान। सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते उच पाए अस्थान बहुर न होवे आवन जान। हर तन खाट चलय जन सोए नानक जिसै प्राप्त होए खेम शांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्ब तह सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इसनान। चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतुर तत का बेता समदर्शी एक दृष्टिता ए फल तिस जन कै मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो ने धान जपै मन कोए सब जुग मै ताकी गत होए। गुण गोबिंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोबिंद भगत कै मन बिश्राम। कूट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम

जी को मन जाने मन कोई मन्ने सुरत हुए मन बुद्ध मन्ने सगल पवन की शुद्ध मन्ने मुह चोटा न खाई मन्ने जम के साथ न जाए ऐसा नाम निरंजन हुए जी को मन जाने मन कोई मन्ने मार्ग ठाक न पाए मन्ने पथ्यों प्रगट जाए मन्ने मग न चले पंत मन्ने धर्म सिती संबंध ऐसा नाम निरंजन हुए जी को मन जाने मन कोई मन्ने पावह मुख द्वार मन्ने परवार ऐसा धार मन्ने तरे तारे गुर सिख मन्ने नानक पवह न पिख ऐसा नाम निरंजन हुए जी को मन जाने मन कोए पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावह दर गहमान पंचे सोह दर राजान पंचा का गुर एक त्यान जी को कह करे विचार करते कह करने नाही सुमार ताओल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत जी को बुझे हुए सचियार तबले ऊपर किता पार धरती होर पर होर होर तिस्ते पार तले कवन जोर जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया बड़ी कलाम एहो लिखा लिख जाने कोए लिखा लिखिया किता हुए

तिष्टे हुए लख दरियाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद पावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाए तार कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूरख अंध कोर असंख चोर हराम कोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेश मल पक खाए असंख निंदक सिर करह पार नानक नीच कह विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद पावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख है सिर पार हुए अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखण बोलन बान अखरा सिर संजोग वखान जिन एह लिखे ते सिर नाहे जि फरमाए तिव ते पाहे जिता किता तेता नाओ विण नावै नाही को थाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद पावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार भरिय हथ पैर तन देहे पानी धोतै उतर सखेहे मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लइए ओ धोए भरिय मत पापा कै संग ओ धोपै नावै कै रंग पुन्नी पापी आखण नाही कर कर करना लिख लै जाहो आपे बीज आपे ही खाहो नानक हुक्मी आवो जाहो तीरथ तप दया दत्त दान

मैं ना ही कोय विन गुण कीते भगत न होए स्वस्थ आत बाणी बरमाओ सत सुहान सदा मन चाओ कवन सुवेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन सिरुती माहु कवन जित हुआ आकार वेल न पाया पंडती जे हुआ लेख पुराण वक्त न पायो कादिया जे लिखन लेख कुरान थित वार न जोगी जाने रुत माहु न कोई जा करता सिर ठीक साजिया फे जाने सोई किव करे आखा किव साला ही क्यों वरनी किव जाना नानक आखन सब को आखै इक दू इक सियाणा वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जाखा हुवै नानक जी को आपौ जाने अगै गया न सूहै पाताल पाताल लख आगास आगास ओड़ कोड़क पाल थके वेद कहनिक वात सह सठारह कहन कतेबा असलू इक धात लेखा हुए था लिखी है लिखे हुए विनाशु नानक वड्डा आखिया आपे जाने आप सालाही ती सुरत न पाया नदियां तैवाह पवह समुंद न जानी है समुंद सह सुल्तान गिरह सेती माल धन कीड़ी तुलना होवनी जे तिस मनु न विसरह अंत न सिफती कह न अंत अंत न करण दे न अंत अंत न वेखण सुनन न अंत अंत न जापै क्या मन मंत अंत न जापै कीता आकारु अंत न जापै पारावार अंत कारण किते बिललाहे ताके अंत न पाए जाहे इहु अंत न जाने कोए बहुता कहिए बहुता हुए वड्डा साहिब ऊचा था ऊचे उपर ऊचा नाओ एवड ऊचा हुए कोए जिस ऊचे को जाने सोए जीवड़ा आप जाने आप आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया न जाए वड्डा दाता तिल न तमाए किते मंगह जो दपार कितिया गणत नहीं विचार किते खप तुटह बेकार किते लै लै मुकर पाहे किते मूर्ख काही खाहे कितिया दुख भूख सदमार ए पैदा तेरी दाता बंद खलासी भाणे होए हो राख न सकै कोए जे को खाए के आखन पाए ओ जाने जितिया मुखाए आपे जाने आपे दे आ कहसे पे के जिसनु बख्शे शिव सालाह नानक पातशाही पातशाहु अमूल गुण मूल व्यापार अमूल व्यापारी अमूल भंडार अमूला वह मुल लै जाहे अमूल पाई अमूला सुमाहे अमूल धर्म मूल दीवान अमूल तुल अमूल परवान अमूल बख्शीस अमूल निशान अमूल कर्म अमूल फुरमान मुलो मुला क्या न जाय आख आख रहे लिवलाए आख वेद पाठ पुराण आख पढ़े करह वख्यान आख बरमे आख

जोर न राज माल मनसूर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुट्टे संसार, जिस हथ जोर कर वेख सोए नानक उत्तम नीच न कोए, राती रुती थिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवार, नदरी करम पवै निशान, कच पकाई उथे पाए, नानक गया जा पै जाए, धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म, केते पवन पानी वै संतर, केते कान महेश, केते बरमे काटत घड़ी है रूप रंग के वेश, केतिया करम भूमि मेर केते, केते धूप देश, केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते, केते देवी वेश, केते देव दान मुन केते, केते रतन समुंद, केतिया कानी केतिया बानी, केते पात नरेंद, केतिया सुरती सेव केते, नानक अंत नंत, ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड, तिथे नाद विनोद कोड आनंद, शर्म खंड की बानी रूप, तिथे घाटत घड़ी है बहुत अनूप, ताकिया गल्ला कथिया न जाए, जे को कह पिछे पछताए, तिथे घड़ी है सुरत मत मन बुद्ध, तिथे घड़ी है सुरा सिद्धा की सुध, कर्म खंड की बाणी जोर, तिथे होर न कोई होर, तिथे जोध महाबल सूर, तिन महराम रहा भर।

हमारा, नमस्कार तिसी ही को हमारी। सकल प्रजा जिने आप सुवारी, शिव कन को सब गुण सुख दियो, शत्रण को पल मुह बद कियो, काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर अस्तूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने, जब उदकर्क करा कर तारा, प्रजा तर तब दे अपारा, जाबा कर्क करत हो कबहू, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ, जेते बदन श्रेष्ठ सब तार है, आप अपनी बूझ उचार है, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा, ताका करपाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत, महादेव कौ कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत न पेव, आप अपनी बुद्ध है जीती, बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, के विद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग भयो राव कही भूपा, अंड जेर से तजकीनी, उत भुज खान बहुर रच दीनी, कहूं फूल राजा हुए बैठा, कहूं सिमट भयो शंकर कैठा, सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचम भव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव, अब रचा मेरी तुम करो, सिख वार सिख संगरो, दुष्ट जिते उठव तुत पाता, सकल मलेश करो रण काता, जे आस तुझ तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुख तहवे मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार त्य है, ताके काल निकट नह है, रच्छा हुई ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट रैं तत्काला, कृपा दृष्टन जाहि निहरे हो, ताके ताव तनक मैं हरे हो, रिद्ध सिद्ध कर मुँह सब होई, दुष्ट छाछ वसकै न कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास ते ताहि उबारा, जिन नर नाम तिहारु कहा, दारिद दुष्ट दुख ते रहा, खड़ग केत में शरण तिहारी, आप हाथ दैले हो उबारी, सर्व ठौर मोह हो सहाई, दुष्ट दुख ते ले हो बचाई, कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण शुभ राता, किल विक सकल देह को हरता, दुष्ट दुखिन को छय करता, श्री अस तुझ जा भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बाचत फल पावे सोई, दुख न तिसे व्यापत कोई अडिल, सुने गुंग जो याहि सुरस न पावई, सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई, दुख दर्द पौ निकड़ न तिन नर की रह, हो जो या की एक बार चौपाई को कह, चौपाई संबत सत्रह सहसपनी जय, अर्ध सहस गुण तीन कही जय, पाद्रव सुधी अष्टमी रवारा, तीर्थ द्रव ग्रंथ सुधारा, सुवैया पाय

मते न मानियो। सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक न जानियो। श्री सुपान कृपा तुमरी कर मैं न कहू सब तो हे बखानियो। दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार बाहि गए की लाजे अस गोविंद।

प्राण कोर अपने प्राण भी ओनू भेटा कर दिया किनू जो कोई परमात्मा वाहेगुरु दे नाल जोड़ दे मेनू ओहदे दर्शनां दी तांग है क्योंकि परमात्मा दा नाम प्रभु दे दर्शन अभय पद बख्शिश करदा है दुखां दा कलेशां दा नाश करदा है अभय पद मिलाप दा राह गुरु दी कृपा नाल खुलदा है। सो ए बचन सतगुरां ने अज हुक्म रूप विच बख्शिश कीते हन। सतगुरु जी कृपा कर समूह संगत दे चरणां विच बेनती है कि कल 23 तरीक नूं प्रथम गतका मुकाबला है जो लाइब्रेरी दे विच तैयारी कीती गई है जिदे विच काफी टीमां आकर के जत्थे आकर के गतके दे जोहर विखाणगे समां कढ के आप जी ने जरूर हाजरियां भरनियां। 27 तरीक तो लैकर के 31 तरीक तक सिख पंथ दे महान कीर्तनीए भाई साहिब भाई हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले वह भी पहुंच रहे हैं उन्होंने आप जी ने गुरबाणी कीर्तन नाल जोड़ना है आप जिया ने वचड़ के हाजरियां भर के लाहे प्राप्त करने हैं जी। आओ प्यार साहब तुहानू अमृत बाणी का कीर्तन भाई साहिब भाई रिशपाल सिंह जी के जत्थे पासों सरवण करिए भुला चुका की खिमा समूह संगत का धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा वाह।

भगवंत सगल समगिरी तुमरा सूतर तारी तुम ते हो वे सौभाग्य तुमरी गात मेत तुम ही जान नानक दास सदा कुर्बानी। सत्संग जी बोलो जी वाहेगुरु वाहेगुरु एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय बार श्री भगवती पाशाह दसवीं प्रथम भगवती सिमर कहे गुरु नानक लई त्याय फिर अंकित गुरते अमरदास रामदास से हुए सहाय अर्जुन हर गोबिंद सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय ते सब दुख जाए तेग बहादुर सिमर है कारण उन्होंने दया वहता है सब साई हुए सहाय दसवें पाशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब साई हुए सहाय दसा पाची ने पुत्र आत्मक स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब ने पारदार दत्यंतर के घर से बोलो जी वाहे गुरु। गरीबन आप जी दे पांच प्यारे चार साहब जा दे चाली मुक्त हटिया जापिया टपिया जो नाम जा पिया वन चकिया देख चलाई तेग वाहे देख नेट कीता तेना प्यार सत्यार की कमाई दत्यंतर के बोलो जी वाहे गुरु। जन्ना सिंगा सिंगणिया धर्म ए सही दिते बंद बंद कटवाए खोपरिया लवाईया चरखड़िया ते चढ़े आरे न चराए गए गुरुद्वारे सेवा कुर्बानियां की धर्म ने आ रहा से किसी देखे सरस्वती संघ निभाया तिना की कमाई दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु। पंजा तख्तां में गुरुद्वारे दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु नाम चिता वह चित आवण का सदका सर्व सुखो वह जहां जहां गुरु खालसा साहब तह चरिया है देख ते एक फतेह बिरद की पैज पंथ की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु। सिखा नु सिखी दान केस दान रैत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नामदान श्री अमर साहब दर्शन स्नान क्योंकि चंदे बुंगे चुग चुगा टन धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु। सिखा दा मन नी वह मत जी मत पत के राखे आप वाहे गुरु। गुरु की प्रवाज पंथ सदा सहाय गुरुद्वारा ननकाना साहब पंजा साहब होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हों तो आप जी पंथ छोड़िया गया है उन्होंने खुले दर्शन की राह तुम आसमान का दान अपने खालसा जी बख्शो हे नोटिया की ओट गुरु ने आसरिया के आसरे गुरु धन धन गुरु ग्रंथ दार दोए कर जोड़ करो अरदास तुत भावे ताने रास। हे गरीब नवाज जी आप जी दे चरण कामना दरदार सिंह दतार जी ने अपनी बख्शिश की है अमृत वेले प्रकाश पाठ हुए संगतों दर्शन दर दे के निहाल दरदार जी हो बेहद बाणियों के पाठ हुए इस वे रागी सिंह ने अपने चरण जा सकी वार कीर्तन किए ने विद्वान भीर ने अज्ञ हुक्मनामे की कथा तैयार की कृपा करो हुई भुला चुका की माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोध के सचखंड प्रवान करो बाणी का भाव सारिया संगत हिरदय सारी कृपाता करो जी अगो तो शोध पित्र बाणी टाली बड़ बुद्धि बख्शिश करो। गरीब महाराज इस खुशी में आप जी दख्शिया दाता पुत्र कराब शादी देगा तैयार कर हाथ दतार आप जी भोग लाओ शीत प्रसाद सत्संग की रसना लायक होवे जो जी सके स्वास स्वास आप जी का पितर नाम जप बख्शिश करो दतार जी दुखा कलेशा रोगों का नाश करो सुखा का प्रकाश करो देश प्रदेश रखा बख्शिश करो जी कृपा करो। गरीब महाराज आप जी बख्शिया दाता जो लंगर तुर से आज प्रबंध करनी ददार आप चरण सेवा कर रहे सारे टैरिये सिंगा सिंगणिया तंदुरुस्ती बख्शो चाडी कला बख्शो सदा ही इस तरह अपने चरण सेवा की भावन बख्शी पालता करो। गरीब नवाज कृपा करो जी ददार जी इस वे दरती आई साफ संगत की हाजरी दर प्रवान करो घड़िया ने खिलाओ संगत का दर से तिर फुर पेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी। गरीब नवाज कृपा करो सिख कौम खालसा पंथ एकता सुभाग प्यार की बख्शिश करके सत दाद बख्शो चाना ना जोड़ो गुरबाणी का प्यार बख्शो हर मैदान दीवान फतेह बख्शी करने की प्यारता करो जी। गुरु गरीब नवाज दूर दराज कराने बैठी लाइव कथा की सरण कर रही सारी संगत प्रवान करो घड़िया लिख लाओ कतार आपने बख्शी की संगत तो बख्शी ने संगत आपके चरणा धनवाद करते हैं शुक्रिया अदा करते हैं बेअंत माया ऑनलाइन गुरु घर गुरु घर सेवा संगतार संगत माया बेटा कर चरना प्रवान करो बच्चा अपनी कमाइया सफल करो कार्यवाद भगतार सब संगत शुभकामना पूरी करो जी मेरा कर आओ सेवा प्रवान करो पुनर्गमाई बख्शो विद रुकनामी बख्शो प्रंत तार लेड़ी वास्ते अच पाठ करने वास्ते आग्ञा बख्शो शोध पित्र सेवा लैंड की बात दतार रेंदे कार सवार के चरण तुरा जी बनाओ सही प्यारे मेनो जिन्हें बनाया तो नाम जतावा नानक नाम चढ़ती कड़ा तेरे पर।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਾਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ, ਕੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਰਾ

नानक कह तो एहो बिचारा, जे कमावै सो पार गरमी, गुर सेवहो अर नाम त्यावहो, त्यागहो मनहो गुमानी। गौड़ी माला पंजवा माधव, हर हर हर मुख कही है, हम ते कशु ना होवै स्वामी, ज्यों राख हो त्यों रही है रहाओ। क्या किश करै के करण हारा, क्या इस हाथ बिचारे, जित तुम लाव हो तित ही लागा, पूरन खासम हमारे। करहो कृपा सर्ब के दाते, एक रूप लिवलाव हो, नानक की बेनंती हर पह, अपना नाम जपाव हो। राग गौड़ी माज महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, दीन दयाल दामोदर राया जियो, कोट जना कर सेव लगाया जियो, भगत वशल तेरा बिरद रखाया जियो, पूरन सबनी जाई जियो, क्यों पेखा प्रीतम कवन सुकरणी जियो, संता दासी सेवा चरणी जियो, एहो जियो वताई बल बल जाई जियो, तिस नेव नेव लागौ पाई जियो, पोथी पंडित बे

जियो, जस मिले मन जीव पाई जियो, गुर प्रसादी सो हर हर पाई जियो, सब किश प्रभ का प्रभ किया जाई जियो, प्रभ कौ साध बल जाई जियो, एहो निधान जपै वड भागी जियो, नाम निरंजन एक लिव लागी जियो, गुर पूरा पाया सब दुख मिटाया जियो, आठ पहर गुण गाया जियो, रतन पदार्थ हर नाम तो

जोर तुम्हारा सुख वसा सच शब्द निशान रहाओ। सबे गल्लां जातिया सुन के चुप किया कद ही सुरत न लदिया माया मोहड़िया दे बुझारत सारता से अखी डिठड़िया कोई जे मूरख लोबिया मूल ना सुनी कहया। इकस दोह चौह क्या गणी सब इकत साध मुठी एक आद नाए रसिया डाका विरली जाए उठी। भगत सच्चे दर सोहंदे आनंद करे दिन रात रंग रते परमेश्वर है जन नानक तिन बल जात। गौड़ी महला पंजवा माज दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम आठ पहर आराधी है पूरन सतगुर ज्ञान रहाओ। जित घट वस है पार ब्रह्म सोई सुहावा।

ओट तेरी जग जीवना मेरे ठाकुर अगम आगाद। भये कृपाल गुसाइया नठे सोग संताप तती वाओ न लगई सतगुर रखे आप। गुर नारायण दयो गुर।

मिलिया निथावे थाओ रहाओ। होर साद सब फिक्किया तन मन फिक्का होए। विण परमेसर जो करे फिट सो जीवन सोए। अंचल गह कै साधुका तरना इहो संसार। पार ब्रह्म आराधी है उधरै सब परवार। साजन बंद सो मित्र सो हर नाम हिरदय दे। अवगुण सब मिटाए काय पर उपकार करे। माल खजाना थे हो कर हर के चरण निधान। नानक जाचक दर तेरा प्रभ तो दोनों मंगै दान। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी महला नौवा। साधो मन का मान त्यागो काम क्रोध संगत दुर्जन की। ताते अहनिस भागो रहाओ। सुख दुख दोनों सम कर जाने और मान अपमाना हरख सो।

जन नानक एहो खेल कठन है, किन्हु गुरमुख जाना गौड़ी महला नवा। साधु रचना राम बनाई, एक बिनस एक अस्थिर मन, अचरज लखियो न जाई रहाओ। काम क्रोध मोह बासु प्राणी, हर मूरत बिसराई, झूठा तन साचा कर मान्यो, ज्यों सुपना रह नाई। जो दीस सो सगल बिनास, ज्यों बादर की शाई। जन नानक जग जाने ओ मिथिया, रहे ओ राम सरनाई। गौड़ी महला नौवा, प्राणी कौ हर जास मन नहीं आवे, अहनिस मगन रह माया मह, कहो कैसे गुण गावे रहाओ। पूत मीत माया ममता स्यों, एह बेद आप बंधावे, मृग तृष्णा ज्यों, झूठो एहो जग, देख तास उठ तावै। भुगत मुकत का कारण स्वामी, मूड ताहे बिसरावै। जन नानक कोटन मैं को, भजन राम को पावै। गौड़ी महला नौवा, साधो एहो मन गहेओ न जाई। चंचल तृष्णा संग बस्त है, जाते थिर न रहाई रहाओ। कठन क्रोध घट ही के पीतर, जेहे सुध सब बिसराई। रतन ज्ञान सब को हेर लीना, तास्यों कश न बसाई। जोगी जतन करत सब हारे, गुनी रहे गुन गाई। जन नानक हर पय दयाला, तौ सब बेद बन आई। गौड़ी महला नौवा, साधो गोबिंद के गुण गावो। मानस जन्म अमोलक पायो, बिरथा काहे गवावो रहाओ। पतत पुनीत दीन बंद हार, शरण ताहे तुम आवो। गज को त्रास मिटेओ, जेह सिमरत तुम काहे बिसरावो। ताज अभिमान मोह माया फुन, भजन राम चित लावो। नानक कहत मुकत पंथ एहो, गुरमुख होए तुम पावो। गौड़ी महला नौवा, को माई भूलो मन समझावै। वेद पुराण साध मग सुन कर, निमख न हर गुण गावै रहाओ। दुर्लभ देह पाए मानस की, बिरथा जन्म सिरावै। माया मोह महा संकट बन, तास्यों रुच उपजावै। अंतर बाहर सदा संग प्रभ, तास्यों नेहु न लावै। नानक मुकत ताहे तुम मानहो, जिहे घट राम समावै। गौड़ी महला नौवा, साधु राम शरण बिसरामा। वेद पुराण पढ़े को ए गुण, सिमरे हर को नामा रहाओ। लोभ मोह माया ममता फुन, औ बिखियन की सेवा। हरख सोग परसै जे नाहेन, सो मूरत है देवा। सुरग नरक अमृत बेख, ए सब त्यों कंचन अर पैसा। उस तत निंदा ए सम जाकै, लोभ मोह फोन तैसा। दुख सुख ए बादे जेह नाहेन, तेह तुम जानो ज्ञानी। नानक मुकत ताहे तुम मानो, एह बेद को जो प्राणी। गौड़ी महला नौवा, मान रे कहा पयो तै बौरा। अहनिस औद घटै नहीं जानै, पयो लोभ संग हौरा रहाओ। जो तान तै अपनो कर मान्यो,
हर सुंदर ग्रह नारी इन मैं काश तेरो रे नाहेन देखो सोच बिचारी रतन जन्म अपनो तै हारेओ गोबिंद गत नहीं जानी निमख न लीन पयो चरणन सियो बिरथा औद सिरानी कहो नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुण गावे और सगल जग माया मोहेया निर्भय पद नहीं पावे गौड़ी महला नौवां।

रहाउ। वेद पुराण जास गुण गावत, ताको नाम ही है मोतर रे। पावन नाम जगत मैं हर को, सिमर सिमर कासमल सब हर रे। मानस देह बहुर नह पावे, कछु उपाओ मुक्त का कर रे। नानक कहत गाए करुणा मैं, भव सागर कै पार उतर रे। राग गौड़ी अष्टपदी।

निद सिद्ध निर्मल नाम विचार पूरन पूर रहया बेखमार त्रिकुटी छूटी बिमल मझार गुर की

नील अनिल अगन इकठाई जल निवरी गुर बूझ बुझाई मन दे लिया रहस गुण गाई जैसा घर बाहर सो तैसा बैस गुफा मह

जिन कहया तिन कहन वखानिया, जिन बूझिया तिन सहज पछानिया, देख विचार मेरा मन मानिया। कीरत सूरत मुकत एक नाई, तही निरंजन रहया समाई, निज घर व्याप रहया निज ठाई। उस तत करहे

पहला ना मन मरै न कारज होए मन वास दूता दुरमत दोए मन मानै गुर ते एक होए निर्गुण राम गुण है वास होए आप निवार बिचारे सोए रहाओ मन भूलो बहु चितै विकार मन भूलो सिर आवै पार मन मानै हर एकंकार मन भूलो माया घर जाए काम विरुद्ध रह न ठाए

संपव सांची पै विकार हरख शोक उभे दरबार सुख सहजे जाप हृदय मुरार नदर करे तामेल मिलाए गुण संग्रह अवगुण शब्द जलाए गुरमुख नाम पदार्थ पाए।

मन चांचल तावत फोन तावै साचे सूचे मैल ना पावै नानक गुरमुख हर गुण गावै गौड़ी ग्वारेरी महला पहला हों मैं करतया नह सुख होए मन मत झूठी सच्चा सोए सगल बेगूते पावै दोए सो कमावै तुर लिखिया होए ऐसा जग देखिया जुआरी सब सुख मांगै नाम बेसारी रहाओ अदेष्ट दिसै ता कहया जाए बिन देखे कहना।

माया मोह सर्ब जंजाला, मन मुख कुचील कुशित बिकराला, सत गुर सेवे चूकै जंजाला, अमृत नाम सदा सुख नाला।

आया। एक निरंजन गुरमुख जाता, दूजा मार शब्द पछाता। एको हुकम वरतै सब लोई, एक सते सब उपत होई।

कीमत कौन रहै ले वलाए, आपे मेले परम चुकाए, गुर प्रसाद परम पद पाए। गुर की सेवा शब्द विचार हमें मारे करणी सार, जाप ताप संयम पाठ पुराण कहो नानक अपरंपर मान। गौड़ी महला पहला खिमा गही ब्रातशील संतोखं, रोग ना व्यापै ना जाम दोखं, मुकत पये प्रभ रूप ना रेखं। जोगी कौ कैसा डर होए, रूख बिरख ग्रह बाहर सोए रहाओ। निरपौ जोगी निरंजन तिहावै।

नर नेह केवल निरपौ नाउ अनाथ नाथ करे बल जाओ पुनरप जन्म नाही गुण गाओ।

ब्रह्म गर्भ किया नहीं जाने आ, वेद की बेपत पड़ी पशु ताने आ, जह प्रभ सिमरे तही मन माने आ। ऐसा गर्भ बुरा संसार है, जिस गुर मिले तिस गर्भ निवारे रहाओ।

हरी। हरी चंद दान करे जस लेवे बिन गुर अंत ना पाए अपे वै आप पुलाए आपे मत देवै दुर्मत हरनाखश दुराचारी प्रभ नारायण गर्भ प्रहारी प्रहलाद उधारे कृपा धारी।

आपे सतगुर शब्द बिचारे, दूजे पाए दैत संगारे, गुरमुख साच भगत निसतारे। बूढ़ा दुर्योधन पत खोई, राम ना जानिया करता सोई। जन कौ दुख पचै दुख होई, जन मेजै गुर शब्द ना जानिया, क्यों सुख पावै भरम भुलानिया। एक तिल भूले बहुर पछोतानिया, कंस केस चंडूर ना कोई, राम ना चीनिया अपनी पत खोई। बिन जगदीश ना राखै कोई, बिन गुर गर्भ ना मेटिया जाए, गुरमत धर्म धीर।

तही प्रकाश हमारा पहो, पटना शहर बिखै पौलैव। तन तन सहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज साहिब कमाल, जिन्हां दा प्रकाश पुरब सारे संसार दे विच बड़ी श्रद्धा भावना नाल मनाया जा रहा है, मना रहे हां। कलगीधर पिता जी जदों साहिब जी दा आउणा पटना दी धरती ते साहिब जी दा प्रकाश होया ते कहिंदे ने पीर भीखण साहिब जिहड़ा अंबाले दे नजदीक बसदा है, अज सिजदा चढ़दे पासे नूं कर रहा है। नाल दी संगी साथी हैरान हन, अज पीर जी नूं की हो गया है। आपां वेंदे हां क्योंकि इह लहिंदे पासे नूं सिजदा करदे हन, पर अज पीर भीखण साहिब बार बार सिजदा कर रहा है। जदों नाल दे संगी साथियों ने पूछा, पीर जी की गल, ठीक हो, अज आप जी चढ़दे पासे वल सिजदा कर रहे हो? कहंदे ने जिसनू मैं सिजदा कर रहा हां, इस दुनिया दा मालक, वो अज पटने दी धरती ते उसने आउणा कीता है। कोई बंदगी वाली रूह, जुड़ी हुई रूह, जिसनू पता है, जिदे मन विच तरला है कि मैं उस परिपूर्ण परमेश्वर प्यारे नू मिलना है। बंदगी तां आपां सारे करदे हां, पर बंदगी एहो जी होवे जिदे नाल पता लग जाए कि मेरा मालक किथे है, नेड़ा है, दूर ना जाने, नित सारे संभाले, नेड़ा है ना ही दूर। जो एहो जी बख्शिश हो जाए, पीर भीखण साहिब कहिंदे ने 3 महीने तकरीबन लगे ने तुर पए, उस वक्त इतने साधन नहीं सन, तुर के लोग की यात्रा करया करदे सन, तुर पे तुरे जा रहे हन उस मालक दे कलगीधर पिता जी दे गुण गाउण दे। जदों उत्थे पहुंचे, दर्शना दी इजाजत मंगी ते नाल कहिंदे ने 2 कुजियां विच परखण लई वी कलगीधर पिता जी वल हथ वधाए ते दोवें कुजियां ते साहिब जी ने हथ रखना कीता। कहे मैं सारे ए अवल अल्लह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन पले को मंदी। ऐसे सतगुरु दीन दयाल सतगुरु कलगीधर पिता जी बाल अवस्था विच उन्होंने निर्णय किया कि असी सारे संसार दे पले लई दोस्त दोखियन पकर पछाड़ो, हमरे सब बैरियन संघारो। जिहड़ी बाणी लिखी है उसते नितरे ने दुष्ट दोखियां दा खात्मा कीता ते बाए गही की लाज अस गोबिंद दास तुहार। साड़ी रखिया, साड़ी लाज रखी, हिंदुस्तान की लाज रखी, भावे अपना सारा ही परिवार कुर्बान कर दिता। दीनन की प्रतपाल करे नित संत उबार गनीमन गारे। दीन आक दिन जिदा कोई आसरा ना हो, साहिब नितानिया का तान, आए ना जाई थिर सदा गुरसबदी सच जान। कलगीधर पिता जी ने साडे लई
ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤ।

0: हाँ जी,
1: अगला जिला प्रोग्राम है मानयोग सकत्र साहब जी को आप जी शरण करो।
2: आगे सुख मेरे मीता पाछे आनंद पाव कीता, परमेश्वर बंत बनाई फिर डोत कतू नाही। धन धन साहब गुरु ग्रंथ साहब जी पावन पवित्र ते राही दरबार दियां हाजरियां, बड़े खुशियां ते अमंगां भरे समें ते भर के बख्शां लै रही परम सत्कार जो सत्संग जीओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी की भार बख्शिश होई है कि आपां अज शुभ आनंद कार्ज आरंभ करन जा रहे हाँ, जिस दे विच सुभाग जोड़ी दे नां हन जी सुखविंदर जीत सिंह, सपुत्र सरदार सुरजीत सिंह ते बीबी जसवीर कौर, ते बच्ची दा नां है जी रमनीक कौर रंधावा, सपुत्री सरदार गुरप्रीत सिंह जी रंधावा ते बीबी परल कौर रंधावा जी। ते उस सारी रस्म जो है ये सिख रहत मर्यादा अनुसार होनी जी, गुरु की बख्श द्वारा उस विच कुछ हिस्से ने आपनूं बहुत ही पता है, पर फिर भी असीं दोहराउंदे हाँ, इत्थे रिपीट कर दिंदे हां। पहला हिस्सा है जी इलाही बाणी दे कीर्तन दा, शब्द गायन किया जाएगा। कीता लोड़ीए काम सवार पै आखिए काज देश सवार सतगुर सत साखीए। साडे कीर्तनी जथे भाई साहब भाई लाखन सिंह जी ते उहनां जथा उह शब्द गायन करेगा। फिर अरदास सुभाग जोड़ी ते उन्होंने माता पिता उस विच खड़े होणगे, बाकी संगतां जिवें आप जी बड़े प्यार ते श्रद्धा नाल बैठे हो इस तरह विराजमान रहना। ते अरदास करनगे भाई साहब नवनीत सिंह जी, छोटी अरदास कह लो उन्हें, ते उस तों बाद हुक्मनामा भी लैणगे। हुक्मनामा लैण ते उपरंत वह बेनती करनगे सरदार गुरप्रीत सिंह रंधावा जी नूं कि वह सुखविंदर जी सिंह जी का पल्ला अपनी बेटी रमणीक कौर रंधावा फड़ाउणगे। ते पल्ले दी रस्म वेले दोनों ने अपने अपने सिर तों फड़ के रखना पल्ला जी, बड़ा जरूरी हुंदा, मैनूं चेता करवाउणा पैंदा। मुंडे वाला पासा जिहड़ा है पल्ला नहीं फड़िया हुंदा, उह बांह ते लटकदा हुंदा, नहीं लटकना नहीं चाहीदा, हत्थ च होना चाहीदा जी। पल्ले दोवें ही लग रहे ने, एक नहीं दोवें लग रहे ने, पर असली तौर पर पल्ले का मतलब है कि असी परमात्मा के पल्ले लग रहे हैं दोनों। परमात्मा दा नाल इत्थे आनंद कार्ज के नाल नाल आपां परमात्मा की गल वाहिगुरू की गल भी करनी हैगी आ नाल थोड़ी बहुती। सो प्लीज एकाग्रता बख्शनी जी, प्लीज़ कंसनट्रेट। अगला हिस्सा फिर लावा आरंभ करेंगे भाई साहब मनीत सिंह जी, तो मैनू नहीं पता कि आप जी दोनों ने खड़े होकर लावा के पाठ सरवण करने या बैठ के जी। खड़े होके ठीक है, फिर जदों पल्ले की रस्म हो गई तो फिर आप जी ने कीर्तन हो गया नाल नाल, कीर्तन की समाप्ति से पल्ले मैं तेंडे लागी दे, फिर आप जी ने खड़े हो जाना सावधान होके पहली लाम का पाठ सरवण कर ली। शाबाश, बहुत धन्यवाद थोड़ा फैसला करने लई। फिर पहली लाम के अखीर से धन धन गुरु नानक साहब जी का नाम दूजी बारी जदों आया आप जी ने मत्था टेक के पहली परिक्रमा शुरू करनी है मेरे वाले पासे नूं आके, सज्जा मोढ़ा आप जी का गुरु साहब वाले पासे होगा, तो जिस सुखविंदर जीत सिंह जी अगवाई करनगे, तो बेटी रमणीक कौर पिछे पिछे चलेगी, ये मर्यादा है जी। तो नाल नाल कीर्तन हो रहा है पहली लाम का, पहली लाम का। सो जिस वेले नाल कीर्तन की समाप्ति होने वाली होगी आप जी ने अपने स्थान से जिथे वापस जा के मत्था टेके फिर खड़े हो जाना दूसरी लाम का पाठ सरवण करने। इस तरह तीसरी तो चौथी चार लाम की समाप्ति तो परिक्रमा करने बाद आप जी फिर बैठ सकते हो बाकी का कीर्तन सरवण करने। फिर कीर्तन थोड़े शब्द बाकी करके पूरे मर्यादा अनुसार समाप्ति होगी कीर्तन की, आप अरदास सारे खड़े होवांगे, अरदास तो बाद फिर हुक्मनामा, हुक्मनामे तो बाद फिर किसी ने बधाई देनी या असी सम्मान भी करना हों इतों की संगत वालों बहुत सुभाग जोड़ी ने। सो आओ आप गुरु की बख्श लीए आरंभ करिए, कीता लोड़िए काम सवार पै के कार्य देश सवार सतगुरु सत साखी है। वाहिगुरू जी का खालसा, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

पोता माता की आशीष निमक ना विसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। जदों घर विच बच्चा बच्ची जन्म लैंदे हन उदों तों ही इस समय दी उड़ीक नानके दादके समूह परिवार कि साडा बच्चा बच्ची जवान होणगे छोटी गल नहीं बड़ी वड्डी गल है, बड़ा लम्मा समा इस समय दी उड़ीक करदे हन अलग खुशियां पातशाहियां। जे सतगुरु नदर करे सतगुरां ने अपार रहमत बख्शिश की दोहां परिवारां नूं समूह रिश्तेदारां नूं खुशियां दे समय प्रदान कीते हन। आओ विआह दे जिहड़े वधाई दे शब्द हन

खोज शब्द में राज करेगा खालसा आकी रहना ख्वार हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो वाहे गुरु नाम जहाज है चढ़े सो तेरे जो

0: पंडित जी कीर्तन द्वारा समाप्ति है और यह पूजा चुका दी आप जी की बख्शिश करनी विद्वान गुणी जन संगत विच उपस्थित हन तो जाहिर है अज असी अनजान हाँ तो कोशिश है कि होर सुचजे ढंग दे नाल कीर्तन कर सकीए शुद्ध राग दे नाल शुद्ध बाणी दे नाल आप जी नूं कीर्तन सुना सकीए ये मनोरथ है साडा तो आप जी असीस बख्शिश करनी पुला चौका दियां सतगुरु खिमा बख्शिश कर देनिया तो आप जी फतेह अर्ज करते हां वाहेगुरु जी का खालसा
1: वाहेगुरु जी की फतेह।